0: radio.ca.
1: रेडियो उड़ान गल्लां गीत ते किस्से कहानियां दी उड़ान रेडियो उड़ान पंजाब पंजाबी ते पंजाबियत दी जान रेडियो उड़ान आजो रल मिल महफिल लाइए एक दूजे दा पुछिए हाल रेडियो उड़ान प्रभ सब दे नाल दरियावां तों नहरां तक दरियावां तों नहरां तक पिंड कस्बे ते शहरां तक दिन दी पहली किरण तों लैके सारे अठे पहरां तक खूह दी ठंडी रात तों लैके हाड़ दे सिखर दुपहरां तक खूह दे ठंडे शीतल जल तों सत सागर दियां लहरां तक कहिंदी कौन अजीज है तेरा अपणियां तों गैरां तक पुछदी सी ओ मेरा रुतबा मैं क्या तेरे पैरां तक मैं क्या तेरे पैरां तक ड्रीम होम अपलायंसेस जे तुसी घर वास्ते बेसमेंट वास्ते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वास्ते अपलायंसेस लब रहे सी ता तुसी ड्रीम होम अपलायंसेस नू याद रखो बिल्ट इन अपलायंसेस फ्रिजस डिशवाशर्स बेस्ट बेस्ट बेस्ट डील दे लई ड्रीम होम अपलायंसेस नू याद रखो विजिट ड्रीम होम अपलायंसेस बेस्ट डील बेस्ट प्राइज प्राइस कहते मैच नहीं बीट करके देंगे 2915 अर्जेंटिया रोड मिसिसागा ड्रीम होम अपलायंसेस 905-805-3000 905-805-3000 रेडियो उड़ान का रेफरेंस देने ते खूबसूरत गिफ्ट भी पाओ फैशन आई क्यू प्रोग्राम दे सिलसिले नूं स्पॉन्सर कर रहे ने फैशन आई क्यू प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड फैशन आई क्यू दे तुसी हैवी ब्लैंकेट रजाई वाले ब्लैंकेट बाय वन सैकंड 25% ऑफ फाइव बेडशीट ओनली $50 ते मैनस सैक्शन दे विच मैन सूट दे उपर तुसी बाय वन सैकंड 25% ऑफ लेडी सैक्शन दे विच लेडी सूट 25 तो लैके 50% फ्लैट ऑफ दे उपर तुसी लै सकदे हो लेडी सैक्शन दे विच कुछ भी और नाल दी नाल फोर पीस दा लैग सैट जे तुसी इंडिया जा रहे हो घूमन जा रहे हो तो फोर पीस दा लेग सैट ओनली $175 दे विच तुसी थीम वेडिंग करवानी है तां बेस्ट टेलर टीम इन्हां कोल इन हाउस अवेलेबल है रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देन ते तुहानू खूबसूरत गिफ्ट मिलूगा ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਊ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਊ 905-453-2225 905-453-2225 ਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਊ
2: ਸੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
3: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਹੈ
4: ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦੀ ਫਸਲ ਸੱਚ ਹੈ
3: ਖੁਰੋ ਦੀ ਪਾਣੀ

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: save onenergy.ca/eap

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।

परमात्मा के नाम तो बिना मनुख जो भी मंगता है वह साधन हो सकता है सुख नहीं। सुख केवल तो केवल परमात्मा के नाम।

0: भी वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तोड़े इन्ने सालां दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुन 3 लोकेशन तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165
1: इंडियन पंजाबी बाजार 115 फादर टोबन रोड ब्रैम्पटन विच भारतीय ग्रोसरी दा भंडार इंडियन पंजाबी बाजार जिथे ताजे फल ते सब्जियां दालां मसाले ते आटा गल की थवाडी ग्रोसरी दियां सारियां लोड़ां पूरियां कीतियां जांदियां ने तुसी उहनां दी मीट शॉप तों मच्छी चिकन ते गोट मीट भी खरीद सकदे हो इन्ना ही नहीं मिठाइयां ते टेक आउट भोजन दा भी प्रबंध है भारती ग्रोसरी मीट ते मिठाइयां लिस्ट दा इक नाम याद रखो इंडियन पंजाबी बाजार
2: GTA the best transportation companies nal mauka mil raha hai vadhiya dollar kamaan da te gaddi chalaun da
3: alpha trans nu jai dene az drivers team driver ate owner operator vadhiya pay package ate 12 mahine kam te maan satkar vi pura karde ne
2: aj hi sampark karo lakhi saini nu 905 799 1525 905 799 1525 ya visit karo 105 east drive brampton
4: o sir aa gaye

डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन।

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत ते चढ़दी कला वाली सवेर दे विच खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक का काम हो तो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल, अफोर्डेबल और ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियों नूं लेके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी काम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-

0: ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਦਾ 4372641375 4372641375 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਾਸ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ।
1: थैंक यू जी, आज आप काम कर रहे हैं, बाकी लोग ने रिकॉर्डेड शो लगा रखा होगा तो आपकी अच्छी बात आवाज भी काम पे है।
0: हाँ बिल्कुल, नहीं आज तो मैंने कहा कनाडा डे है, आज तो नहीं भी प्रोग्राम करने का मन करता, फिर भी करना है ना।
1: हरी कुछ जी, कुछ जी, कुछ जी,
0: जी,
1: हरी हरी,
0: जी
1: सही करा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: हरी
0: तो सारांश थोड़ा बताएं, जो हमारी गवर्नमेंट है, देखो कितना कनाडा बढ़िया कंट्री है जो कि हेल्प करता है हर एक तरह से, है ना। जैसे अभी राणा पाजी
1: हरी
0: ताके गए RDSP का, तो आप एजुकेशन के बारे में बताओगे कि कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, तो ग्रांट कौन कौन एलिजिबल है इसको लेने के लिए, वो बताएं थोड़ा सा।
1: हाँ जी। सो सिर्फ 17 डेज रह गए हैं, तो ये नहीं कि आप मेरे पास या हमारे पास 20 दिन बाद आएंगे बोलेंगे सर अब करा दो, है ना। हम पहले से टाइमर मेंशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, तो जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ 17 डेज, नेक्स्ट 17 डेज तक वैलिड है। और इसमें आप लाइक गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम्स करते हैं, आसान से कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, आप चाहे 30 के हैं चाहे आप 75 के, पेंशन पे है। अगर आपकी इनकम $70,000 से कम है, कम है, कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, तो वही आप इसके हकदार हैं, तो ही आप हमें इसे कॉल करें हमें, क्योंकि अगर आपकी इनकम ज्यादा है आपको फायदा नहीं है, तो हम कुछ लाइक गंजे को कंघी नहीं बेचते, हम सीधा साधा काम करते हैं जी, कुछ नंबर इसमें हिल नहीं सकते हैं, कोई इसमें सेटिंग है नहीं। अगर आपकी इनकम कम है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, कॉल करें, हाउस वाइफ है कॉल करें, आफ्टर असेसमेंट कराएं। हमारा ऑफिस आज भी ओपन है, तो लाइक 30 से 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, जिसका हाफ पोर्शन तो ग्रांट्स है, टैक्स फ्री, जो वापिस नहीं करना होता आपने।
0: ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा ये बताएं कि कितनी ग्रांट जो है अवेलेबल हो सकती है एक परिवार में, अगर चार जने हैं ना, पेरेंट्स हैं, दो बच्चे हैं उनके, तो कितनी की ग्रांट वो हासिल कर सकते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, पहले एक छोटी सी बताऊंगा मैं। लाइक मुझको थोड़ा फीवर था तो मैं कल डॉक्टर पे गया क्लिनिक में, वहां एक पोस्टर लगा था, अगर आप रिफ्यूजी क्लेमेंट है आपके लिए फिजियोथेरेपी फ्री, कायरोप्रैक्टरी फ्री, जूते की सोल फ्री। अब वो जूते की सोल आप और मैं अगर लेंगे तो हमें $50 की मिलेगी, जब वो लोग गवर्नमेंट को बिलिंग करेंगे वो $300 लेंगे उनसे। तो गवर्नमेंट जब इन चीजों पर इन्वेस्ट कर सकती है, दिल खोल के खा करके वो बिलिंग बजाए जा रहे हैं क्लिनिक वाले, रिफ्यूजी क्लेमेंट, रिफ्यूजी ग्रुप नहीं कह रहा मैं, रिफ्यूजी क्लेम कर रहा जिसमें, और गवर्नमेंट खुद कहती है कितने लोगों ने गलत तरीके से क्लेम करा, जो उनको इतना बेनिफिट गवर्नमेंट देती है तब तो मैं हानि होती नहीं है। जब गवर्नमेंट एजुकेशन में फंडिंग करती है तब लोगों को लगता है कुछ कैच हो, गवर्नमेंट फंडिंग क्यों कर दी है, ऐसे भी लोग हैं हमारे। तो पहले वो रोकिए जो गवर्नमेंट इतना रिफ्यूजीज पर इतनी जगह पर लगा रही है जहां पर लगाना भी नहीं चाहिए। ओके, फैमिली ऑफ फोर में 80,000 की फंडिंग बनती है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन कोर्स करते हैं, घर के कंफर्ट से करते हैं, और उसमें एग्जामिनेशन नहीं नहीं नहीं है, असाइनमेंट है आसान सी, आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो। लाइक इसमें कुछ भी एंड टू एंड सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। 80,000 में से 40,000 ग्रांट है आज की डेट में, और 17 दिन बाद एनरोल करेंगे तो 80,000 का 80,000 ही लोन आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है।
0: ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप अपना एड्रेस और फोन नंबर बताएं, और आज आप ओपन हो, ठीक है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, आज हम ओपन है, हमारा एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, स्वीट नंबर 212, आप आ सकते हैं आज भी। लाइक हमें 8 साल हो चुके हैं जी बिजनेस में, आज स्टार्ट नहीं करा, बहुत टाइम हो गए करते हुए, बहुत लोगों को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं। एंड देन लाइक हमने ना सब कुछ सिंपल रखा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं आपका, आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया फैमिली का, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट। सिंगल बंदों को फायदा नहीं है फंडिंग, उनको सिर्फ लोन आता है, ग्रांट से फीस निकल जाती है, तो उतना फायदा नहीं है उनको, हम रिकमेंड नहीं करते। अगर आप मैरिड है या सिंगल मदर है विद किड्स, आपको अच्छा बेनिफिट है इसका, और अब नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें क्या एडिटिंग करेंगे आप, जहाँ कारीगरी नहीं है वहां कमीशन नहीं है, वहां सेटिंग नहीं है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, तो बस इसमें कुछ कैच है ही नहीं दूर दूर तक। जब गवर्नमेंट LGBT को 100 मिलियन दे सकती है और प्राइड परेड की सिक्योरिटी में 7 मिलियन की ग्रांट दे सकते हैं।

0: यार इना इंश्योरेंस ने धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल लिंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: आप पंजाबी आ गए
4: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
5: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज़ के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल

0: insurance specialist from Talk Face Insurance Agency.
1: Mama, इस बार मैं भी कृष्ण बनूंगा
2: और मैं कृष्ण के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
4: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आए और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाए। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
5: करता आपा एड़ा वड़ा एना सोना ले लिया, हुन अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी, सब एथों ही लवांगे। एना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसे ब्याज दे। होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828, 905-450-2828।
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने। गड्डी चलाउणी मुश्किल, टीवी देखना औखा ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। इह प्रीमियम कैटरैक सर्जरी माड़ी नजर नूं भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहिंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जांदी है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया, ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेर। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोल देने। होर जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io punjabi@lumia.io 289-982-9597 289-982-9597।